0: que eran los que me habían podido pasar. Antes era así, pero no se puede poner a ver si hay que ser con un papá. Sí. Porque el management ha que aprender a nosotros. Es disculpa. Porque el management. Yo el management culpa. Van a poner a la ID. Van a dar para el que quieran ver a mi pasar.
1: Doche si chet santo se chingada por él. Pesad mexicano. Chat yo voy a plegar que si mi papá tú y si tú más, hace por la pera a un sitio que te pongo.
0: Apan dari kalagi, bukan apa berdiri apan apa bersama. Di dalam proses semua pun, sudah pasti kau sudah berisi pasti. Kurai, anda lebih pasti politik pasti tentang apa. Anda lebih pasti politik pasti pada si nasib pada dalam sahaja.
1: Perkara dapat kita tarik di mandir macam itu kali. Supaya anda kecari dulu kau dah tahu.
2: Azir, siapa? Siapa kau berlagak so? अब न्यूरो रोग को उपचार उतना नहीं होना 10,000 भंडार बड़ी बीमारी को टोटल ऑपरेशन करेगा अनुभवी प्राध्यापक डॉक्टर एम रोग का पहले गंदगी मेडिकल कॉलेज उतना पृथ्वी चुपना अनुभव छोड़ी
0: मस्तिष्क न्यूरो दंडरो सॉरी कि न्यूरो समस्या तब बराबर कर देना अनुभवी हाँ अनुभवी डॉक्टर ये है
2: 28 वर्ष देखी को अनुभव न्यूरो आईसीयू तथा ओटी को सुविधा प्राप्त सब जानकारी का लगी 0180-585-5674-044
0: गंडकी मेडिकल कॉलेज पोखरा तपाई को स्वास्थ्य हाम्रो भरोसा काही दिदी आलु लगाउने बेला भयो खै पाउनु भयो त ए ताई पनि भरे हुनु त रहेछ त है ल्याउन त कहाँबाट ल्याए पनि कान्छे हाम्रो त बुढाले ल्याएका हुन् मलाई पनि साह्रै राम्रो रहेछ सुन्न त मैले घरपट्टिको सफल एक एकमा रहेको कुखुराको खम्बा त गीत पनि राम्रो कोटमा राखेर बनाएको घर पाइँदो रहेछ छिटो जाउ त हाम्रो घर सस्तोमा पाइएछ है मैले त त्यहीबाट ल्याएको ए हो र हजुरी हाइजेनिक राजमा गुणस्तरीय कुखुराको मल पाइनुका साथै होलसेल मूल्यमा पहिलो गिरिराज कुखुरा पनि पाइन्छ साथै माछा चाहिएमा पनि हामीलाई स्थान दिनुहोस्
3: हाइजेनिक राजले शुक्लाबन्दी

ज्यालो तायोलाई रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट गरी हाँसी भाषा वेता आवश्यक कति नबी दिवै नारा सहित हरेक सोमबार नाहर 9:20-10 बजेसम्म मंगलबार 9:15-6 बजेसम्म प्रसारण नभा कार्यक्रम आदिवासी संसार र हार्दिक स्वागत म कार्यक्रम प्रस्तुत नौमया समुस्यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ शुक्लगण्डकी नगर सम्बन्धी परिषद मदत उत्पादन लभा सु रेडियो भाषा तथ्य कार्यक्रम संयोजक आदिवासी जनजाति महासंघर्वे सचिव विष्ण श्रेष्ठज्यू अध्यक्ष आदिवासी जनजाति महासंघर्वे कुल कुमार कुमारज्यू ने कार्यक्रम संयोजक आदिवासी जनजाति महासंघ सलाहकार खिम कुमार ज्यू अनि गण्डकी प्रदेश सर्वे सचिव विमल जीसी का कार्यक्रम उत्पादन सहयोग लभा जम्मै सहकर्मी निसेवा तुमैलाई लैले ज्ञानजी सम्मान आभार व्यक्त लम्बो श्रोतामय तिनबे श्रृंखला र मैले जे फरक नयाँ छलफल साँकी र खाइम विशेषता तोहो दिदिया उना भर्खरै नि गुलेगौडा गणपति तमु समाज 2083 जेठ 8 गते नि समाज तरौ सिरबारी अवलोकन भ्रमर ग्यालो बाहिर गलतले रमाइलो महादी विशेषता सो सिरुबारी याबा नि समाजर्वे अध्यक्ष मिठे बा अदमे दाई जित बहादुर साथै समिति पदाधिकारी आमा समूहर्वे अध्यक्ष क्रथे बा सिरमाया लगायत जम्मै सहकर्मी भूमिका मोला छतै रंग दुले गणपति तमु समाजलाई लिले सम्मान व्यक्त लगो नि टोटल साथी जोगो जम्मै लैर 76 जना मलो सिरुबारी बे हेसरी निलाई बाजा गाजा लैर स्वागत लाई नाचर्वे अर्गेनिक प्रोके मकै निचिया बी मलाई पहिला बे सम्झना खाइ झनै रमाइलो तै च नाचर्वे गतिविधि जोगो बुद्धि मैले संस्कृति प्रति ओतप्रोत सभा मौलिक पहिचान जोगी रखेबा वातावरण सिर्जना मुना धी धुरी 44 धुरी मुना श्रोतामै सु जानकारी लिसो सुरु बारीर बे ता लम्बो तर चु भन्दा ओसो छ्याबाले तमुई कोही थेत ओ कोही भाका मो नुभई दरबारा अन्तिम समा फेरा तिमिन औ

0: एक्साइटिंग थोपलो आठ
1: अंतर्मन को आवाज
2: स्टेशन वन स्टूडियो तांचेर
3: अहिले राति को 9 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: मेरो दिल की रानी तिमी, माया की खानी तिमी, मैले हेर्ने दुई आँखामा एक आँखाको नानी तिमी।
1: I love you, I love you, I love you.

0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोधक शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र व्यवस्थापन संस्था शुक्ला गण्डकी आस्थान हो।
2: फुकै खाए सारे मिठो पकाए त अच्वाकै, एक पाकेटले पेट भरि नि के हो भने अपवाकै।
3: यो हो बोनस चाउचाउ।